नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे, बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

राजा इन्हें सजा देवेगा। ता परमेश्वर ने आप सैन नाई का रूप धारे। लोग कहते नहीं

एक गलू ते राजे ने तसल्ली हुई के राणी माड़े पासे नहीं आई, पर कहन लगा राणी ने मैनु दस्या क्यों नहीं।

नमो शिल्प भक्ति बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां दी पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री

स्वै सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पोत्र का झले लहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी धीरे शाम है मोख दा

खंडो खड़ग अस्त्रपान खंडो खड़ग तुप्त तवर अर्ते अस्त्रपान खंडो खड़ग तुप्त तवर अर्ते सैप सरोही सहरी यही हमारे पीर सैप सरोही सहरी यही हमारे पीर तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार नाम तुहारो जो जमे

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुत धड़कन आगर्दन तीरं तुत धड़कन आगर्दन तीरं तुत धड़कन आगर्दन तीरं

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल ताल नसे हर सर नसे, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत पराप्त।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। सरवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसीं सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पदार्थ, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसा की फतेह। चार फूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ, शाम मोहरा चलाओ। सुनो नंदलाल एहसास, प्रगट करूं मैं अपना राज।
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब।
1: सुनो नंदलाल एहसास, प्रगट करूं मैं अपना राज।
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं, वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं।
0: चार वर्ण एक वर्ण करा, वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं।
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज,
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज,
1: देश खालसे को तुर्क जा।

0: एक खालसे को पुरत जाएंगे पार, देख खालसे को पुरत जाएंगे पार।
1: लाख एक लड़ाऊ चले सिंह
0: किस मुकरण नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत पाए। सवा लाख जब झुके पलीता, सवा लाख जब झुके पलीता, तबे खालसा उदे

दुनियादारा की सेवा विच कितना कु फर्क है। दुनियादारा की सेवा करेगा चार पैसे नसीब हो जाएंगे। गुरु नानक देव दास की सेवा करेगा तेरा लोक भी सुखी होगा ते परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गुरु नानक दे दर ते आके जिसने भी सिद्क प्यार पाव

आनंद सहज तब खेले। गुरु अर्जुन देव पाछा इस शब्द विच अपने गुरु पिता का शुकराना करते हुए, हे वाहे गुरु, हे अकाल पुरख।

तारक हमेशा ही पुला कर दे हा। पूले बारक अनक लख वरिया, कितनिया को पुला कर दे है बारक उसकी गिनती नहीं। पर तेरी रहमते नजर तेरी बख्शिश सदा ही रहती है, जदों ही बारक कोई गलती करने लगता है, क्योंकि बारक अनजान है। बच्चा अग नू हाथ पा लेगा है, उसनू पता नहीं कि मैनू ये जला देवेगी। पर हे वाहिगुरु, जिस तरह माता पिता उस अग्नि तो बच्चे नू बचा लेंदे हन, चुक के अपने गल नाल ला लेंदे हन, तू ही इसे तरह सानू अपने गल नाल लाउंदा है। चंचल मत बारक बपड़े की सर्प अग्न कर मेरे, बच्चे नू कोई पता नहीं भाई ये वस्तुआं मेरे लिए नुकसान दे हन। बच्चा अग नू भी अनजाने हाथ पा लेंदा है, सप नू भी हाथ पा लेंदा है, पर मां सदा ही उसनू चुक के अपनी गल नाल लाउंदी है, उना खतरियां तो उसनू बचा लेंदी है। हे वाहिगुरु, तू भी इसे तरह मेरी रक्षा करदा है, जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी। गुरु अर्जन देव पातशाह अकाल पुरख का शुकराना कर रहे हैं।

पैर सन उस नू वैश कर दिता गया। एक शरीर दे चार हिस्से बना दिते, लेकिन सतगुरु ने चारा तो एक बना दिता। भाव कि इन्हां कर्मां नू साड़ के एक खालसा पैदा किया, जिस खालसे ते सतगुरु कहिंदे ने मैनू बड़ा मान है, मैं खालसे ते बड़ा मान कर।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो तां आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता एक पासे रिया, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध कीवें जोड़नगे? अपना जन्म कीवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ़ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाप कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने।

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को पलना सो आए माए ग्रे काज लागे जाए, पलना सो आए माए ग्रे काज लागे जाए, सुन सुत रुदन पै पियावे मन मोद को,

ज्ञान मती घट चानना परम अज्ञान अंधेर मिटावे होए निमाणा तै पवे दर गए मान निमाणा पावे।

पीख मांगन पिखारी दी देख अधीने निराशो ना बिडार बैठत है जाके द्वार आशा के बिडार स्वान अंत करना के तोर टूकताए डार है पायन की पनीर है पर हरी परी काहू काहू काज उठ चलत सुमार है छाड़ अंकार छाड़ होए पुरमार्ग में छाड़ अंकार छाड़

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरु सिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।

छूत कलह न कीड़िया क्यों चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार बसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो वे।